हाँ जी, इसकी तो बात साझी करन जा रहे हैं। नफरती भाषण से रोक, एक रिपोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मौजूदा कानूनी प्रबंध जनतक व्यवस्था के नाल नाल फिरकू सद्भावना लई खतरा बनने वाले नफरत भरे भाषणों नाल निजिठण लई काफ़ी है। कार्यपालिका ते जिम्मेवारी पाउंदे हुए अदालत ने कानूनों के लागू करन दे विच असावेपण नूं वड्डी चिंता दस्सिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैतिक चेतावनी दिंदिया कहा कि नफरती भाषण भाईचारे दे संविधानक मूल दे मूल रूप विच विरोधी हन। इसका संदेश स्पष्ट है, सभ्यक बोलचाल नूं लगण वाला खोरा गणराज की नींह ते वार करता है। चोणवें रूप विच लागू किए जाने वाले जां कारगर साबित ना होने वाले कानून भी उन्हां कानूनों वांग ही बेअसर हुंदे हन जिन्हां नूं लागू नहीं किया गया हुंदा। कार्यपालिका खास करके कानून लागू करन वालियां एजेंसियां नूं डर जां पक्षपात तों बिना काम करना चाहीदा है। हालांकि नफरत भरे भाषणों नूं रोकण लई सरकारां वल्लों किए गए यत्नां विच बहुत कुछ लोड़ींदा छड़ दिता गया। ताकतवर सियासतदान अक्सर वंड पाउण वालियां ते फिरकू माहौल सिरजण वालियां टिप्पणियां करके बच जांदे हन क्योंकि पुलिस उन्हां विरुद्ध कार्रवाई करन तों झिझकदी है। न्यायपालिका नूं फर्ज प्रति इस गंभीर अणगहली ते नज़र रखनी चाहीदी है ते इस दी सख्त निखेधी भी करनी चाहीदी है। जदों अपराधियों नूं सज़ा नहीं मिलती तो कानूनी प्रबंध ते अजिहियां संस्थावां विच लोकां दा भरोसा कमजोर हुंदा जांदा है। अदालत वल्लों नवीआं कानूनी विधियां बनाउण तों इनकार करन नाल जिम्मेवारी विधान सभा ते आ जांदी है। हुण संसद ने यह फैसला करना है कि की अजिहे युग विच प्रबंधां दा मौजूदा ढांचा काफ़ी है जिथे डिजिटल प्लेटफॉर्मा राही नफरती भाषण तेजी नाल अते वधेरे दूर तक पहुँच रहे हैं। जेकर कोई खामी है तो उसनू कानून तहत इस तरीके नाल हल किया जाना चाहिए है क्योंकि उन्हां दियां लापरवाही नाल कीतियां टिप्पणियां अग दे विच घिओ पाउण वाला काम कर सकदियां हन। नफरती भाषणों का मुकाबला करने लई समूहक यत्नों की लोड़ है। स्टेट नूं निरपक्षता नाल कानून लागू करना चाहिए है। विधान पालकां नूं जवाबदेह होना चाहिए है ते लोकां नूं भाईचारक सांझ बनाई रखनी चाहिए है। जदों भी लोकतंत्र ते बाकी थंब कमजोर पैण लगन तां न्यायपालकां नूं दखल देना चाहिए है। इसी प्रोग्राम दे विच इक रिपोर्ट तिलो। हम प्रोग्राम अगे लैके चलते हैं, आप जी नूं सुणाउंदे हां इक होर गीत।